0: NPS means new psychoactive substance, which are mind-altering substances. Mefedron internationally is an NPS. I will take you through the East Africa, wherein there is a leaf which is called khat leaves. So it is chewed. It has some active components which alters the mind of the person. It's a plant-based substance. That mimic is found in mefedron. The kick which somebody gets, or the high which somebody gets by chewing this, can be directly related to mefedron. Mefedron is clandestinely manufactured. There have been plenty of cases of mefedron factory bust.
1: मेफेड्रॉन मुंबई में ये लोग इसको चाची बोलते हैं, तो वो बेचते हुए
0: मेफेड्रॉन एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कोकीन. सो इफ समबडी डजंट हैव द वेयरविथऑल टू बाय कोकीन, ही विल गो इन फॉर मेफेड्रॉन. चीप व्हेन कंपेयर्ड टू कोकीन.
1: कोकीन अच्छे में अच्छा 15,000 तक भी जाता है, और मेफेड्रॉन अच्छे में अच्छा 1500 रुपये 1 ग्राम. या 18 में मैं पकड़ाया था 30 ग्राम मेफेड्रॉन के साथ. तो पता चला कि पुलिस ने हमको कहा आपको रहना है, हम आपको छोड़ देंगे, आगे का इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे बस. तो उसके बाद फिर मैं इंफॉर्मेशन की लाइन में आया. 7 ईयर्स से, 7 साल से इंफॉर्मेशन, तो 7 साल से. 7 साल में मोस्टली ज़्यादा करके मेफेड्रॉन इंफॉर्मेशन के लिए, तो मैं कर लेता हूँ कंज्यूम मेफेड्रॉन. तभी हमको वो लोग को भी हम पे ट्रस्ट आएगा, और हमको उन पर ट्रस्ट, हमको ट्रस्ट बनाना पड़ता है जो मुझे कमर्शियल दे सकता है 52 ग्राम्स. 90% चांस है वो मुझे मिलाएगा, 90%. अब मुझसे मिल के उससे आगे का सोच लेंगे कि भाई तुम कितना दे सकते हो. मेरे को ज़्यादा लगता है, मेरे को 1-2 kg लगता है. इफ एग्री हुआ लेके उनका सोच करेंगे साहब ये एग्री है देने के लिए. ऐसा करके हम इंफॉर्मेशन लेते, और फिर आगे तक के 6 मंथ 3 मंथ लगता है ये को होमवर्क करना. होमवर्क
0: कोकेन इज इलीगल, मेफेड्रोन इज ऑल्सो इलीगल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट देयर इज मशरूमिंग ऑफ clandestine labs.
2: I think 3-4 years back, hardly 1 or 2 seizures in a year. But now we can see that 25-30 seizures are taking place.

0: केमिकल लेना बहुत इजी है, केमिकल तो ऐसा आज ऑर्डर करूँगा कल आ जाएगा। जिनकी केमिकल की फैक्ट्री है उनके पास लाइसेंस है और उनको लाइसेंस ओनर को ही देना लीगल है। वो इफ़ 10 रुपये का केमिकल है तो मैं आपको 1 का 3 ऑफर करूँगा, 4 ऑफर करूँगा, 5 भी ऑफर कर दूँगा। अब आप पहले ना बोलोगे, बाद में सोच के फिर ठीक है बोले ले ही रहे करके क्या है, तो आप केमिकल तो मुझे प्रोवाइड कर दोगे।
1: सो व्हाट वी आर डूइंग दिस अवेयरनेस कैंपेन अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, वी आर आस्किंग देम टू गिव अस द फीडबैक अबाउट द सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस ऑफ एनी, इफ समवन इज कमिंग एंड आस्किंग फॉर द केमिकल्स व्हिच डू नॉट हैव एनी लेजिटिमेट यूज।
2: And you will have to tell to whom you are selling, how much did you sell. So you cannot be selling it to somebody who has nothing to do with it. So there is a way of monitoring it. But of course, there are any number of persons who would attempt to subvert the system.
1: Recently, there was one investigation. Chemical was supposed to be exported from India, going for the one particular A country. Chemical was declared properly while it was being exported from the India. But from that country A, it was going by the different name to the country B. It was misdeclared at their end. It was declared something else, where it was going to be used for illicit manufacturing of drugs. So there is an international investigation. Recently, we have many cases where this complete supply chain has been busted and they are all booked under the relevant laws.
0: ड्रग्स पेडलरों को पकड़ा है तो उनसे पूछताछ में पता चला तो केमिकल की फैक्ट्रियों पे भी उनने रेड किया है। अभी लास्ट रेड मुझे पता है वलसाड़ में हुई थी, बड़े केमिकल फैक्ट्री वाले को लिए थे एनसीबी ने।